इससे एलजी ले ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी एलजी लाइफ्स गुड.

नुआ की मुख्य मुख्य खबर का स्थिर सखरो पुनहाई पटक अविरल वर्षा का कारण नेपाली कांग्रेस सैंजा को क्षेत्र तथा प्रदेश को अधिवेशन सरियो सैंजा को पुतली बजार एघारौनिया चौर का केसी द्वारा कफी उत्पादन ब्रांडिंग करी पर्यटन संघ फार्म जोड़ अविरल वर्षा का कारण खोला तथा साहे खोला में पानी को बहाव बढ़ते खोला छे जान आग्रह आधी खोला खबर सकियो साँझ 6:30 बजे अर्को आधी खोला खबर लिएर आउनेछौं अहिलेलाई पनि प्रविधि कक्षबाट अशोकसँगै म पनि बिदा हुन्छु ज्ञान सूचना र मनोरञ्जनका लागि सुन्दै गर्नुहोला रेडियो आधी खोला नमस्ते।

0: दस नहीं
1: आइए हम लोग अनिमा
0: दस बजे अच्छा
2: इस समय को साथ में जेटू सुनसादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ पांच गड़े कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
3: पहाडको छुक छुके दिल
4: आमा मामा कति राम्रा गीत बजेका कता राम्रा राम्रा सन्देश आएका होइन यो त साथै एक सय पाँच थप्लो चार मेरा हाउसको रेडियो आदि खोले रहेछ क्या हो
5: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लाग्यो तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम एक सय पाँच थप्लो चार मेगा